जब से देखा है जलवा तुम्हारा कोई आंखों में जस्ता नहीं है लाख देखे यहाँ हुस्न वाले तो दुनिया में तुझसा नहीं है कभी वो भी तो दिन थे जब तुम महबूबा थी मेरी दिल हरदम खुश था उसने स्माइल की सूरत तेरी निकल गए मेरे सहारे रह गया मैं अकेला जीत कर भी बाजी में हार गया